जन्म मरण दुख जाए वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा गोरपुरा पेट्यो वड पागी मने पया परगासा।

की फतेह है। परम सम्मान योग गुरु खालसा सतसंग जी, आप संगत वडभागी हो, संध्या समय सतगुरु दे पावन पवित्र सोने दरबार दिया हाजरियां भर रहे हो। सतगुरु की अमृतमय बाणी का रस पिन्ना कीर्तन आप संगत ने सरवण किया है, तो हूँ आप संगत पावन गौर इतिहास की कथा सरवण कर रहे हो। चल रहा लड़ीवार इतिहास पंचम पातशाह शहीदां दे सिरताज शांति दे सोमे महान परोपकारी सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज दा है। गरीबन वाज सतगुरु जी श्री अमृतसर साहिब सरोवर दी सेवा करवा रहे हैं। जदों अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं इस गल दा पता लग्या कि हुण उस अमृतसर सरोवर दे अंदर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब रब दा घर बनाउणा चाहुंदे हन, ता अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर आप सरगुण स्वरूप धारण करके उस पवित्र स्थान ते पहुंचिया जिथे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दी न्याऊं ते बुनियाद रखी जानी सी। जदों आपां सचखंड श्री दरबार साहिब जाने हाँ, पिछले पासे परिक्रमा करदे हाँ, तो जिथे संगतां जाके उस अमृत का चूला भी लैंदियां ने, उस जगह नूं हर की पौड़ी कहा जाता है। हर की पौड़ी हर परमेश्वर का नाम है, तो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने उथे आप आके

संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोड़ भाग्य पाए कोड़ जन्म।

आख मिर्ग दी समझ शिकारी जल सी बाण चलाया जा लगा सी कृष्ण साहबनो बचन गुरा तद पाया जा लगा सी कृष्ण साहबनो।

0: 1550 KRPI Radio te tusi sun rahe si live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib Scott Road Sari.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale Washington.
2: Waheguru ji ka khalsa Waheguru ji ki fateh Guru Rup Sat Sangh ji Hari Jas पहले आप जिन्हें रस गिने कीर्तन राही सरवन कीता फिर गुरमुख प्यारियां तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अगम्मी लड़ी वार विचार आपने सरवन कीती। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान दे महासागर ने, इस सागर विच जीवन भर दे चों भी अगर कोई मनुख प्राप्त करे तो मेरे ख्याल एक बूंद तो ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ विचारां आप जी दे सामने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की मेहरामत दा सदका रखण दी निवाणी कोशिश कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां उचारण कीतियां दो पंक्तियां, अगां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंज एह आवार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। जिते मुड़ के जन्म ते मरण तो बचना चाहना है, क्योंकि भारत का सारा धार्मिक जीवन धार्मिक अभ्यास ऋषि मने बस दो ही दुख मनते ने, जन्म ते मरण, बाकी सारे दुख इन्हां दी छाया ने। बहुड़ ना होवी जन्मड़ा तो फिर की करिए, अगां को तरांग अगे वेख अगे वेख, पिछा फेर ना मोड़ड़ा, भूल के भी पिछे वेखण दा यतन ना करे। अगां को तरांग पिछा फेर ना मोड़ड़ा, नानक सिंज एह आवार बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। प्रभु ने एक मौका दिता, एक वारी दिती है, अवसर दिता है अगे वेखण दा, तो अगे वेख। तो अगे की वेखिए, एक प्रश्न। साहिब कहिंदे ने दे लम्मी नदर निहालिए, गुरु नानक देव जी महाराज लम्मी नदर वाले नो उर्दू च कहिंदे ने दूर दृष्ट, यह बड़ा दूर दृष्ट है, बड़ी दूर तक वेखदा है, तो दूर तक की वेखदा है। लंबी नजर निहालिए, दे कोल बड़ी लंबी निगाह है, इहदी तकनी बड़ी लंबी है, बहुत दूर तक वेखदा है, बहुत दूर तक वेखदा है, तो दूर तक की वेखना है, शिखर नूं वेखना है, शिखर दूर तक की वेखना है, अपने घर नूं वेखना। हुण मैं अर्ज करा, साडे कोल जिहड़ा जीवन है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बिरद है, अगर एक बच्चा अगे वेखे अपने विच, अगे वेखे तो की है जवानी, जबकि बच्चा अगे नहीं वेखदा, बच्चा बचपन च ही उलझिया रहिंदा, अपने हाण दे च ही उलझिया रहिंदा, खिडौणियां दी खेड दे च ही उलझिया रहिंदा। भावे जवान उसके सामने होवन, बच्चा जवानी नू नहीं देखता, अपने विच जवानी नू नहीं देखता, इतनी लंबी निगाह उसकी नहीं होंदी। अगर एक बच्चा अगे वेखण दे समर्थ हो जाए तो फिर की है, जवानी है। जरा होर अगे वेखण दे समर्थ हो जाए तो की है, बुढ़ेपा है। तो मर्ज करा, कोई जवान बुढ़ेपे नू नहीं वेखता अपने विच,

मित्रंतयंत सतरं दृणंत अनिक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम ध्यान उद्यान रमणं

0: आराधनानक हर हर हर।
1: मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियां विचों प्रबल कमजोरी अहंकार, अहं, मैं हां, मैं हां, मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहिंदी है, ये अहं भाव रहिंदा है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहिंदा है, चलता रहिंदा है। ये जन्म ते मरण दा मूल है, ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए, होमे एही बंदना फिर जौने पाए। होमे दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आ सकता है, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं

सारी धार्मिक साधना हाथी का इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंह ना निकलदा, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहने की सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतनी जबान ते आ जांदा है ना, नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे काम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गया है। हां कहने विच इन्हू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दी है ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसे दुश्मनी बढ़ते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते ने, दरख्ते दोस्ती बनिशां कामे दिल बबारारद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारारद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितों खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नूं, जड़ चेतन सबनों अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है,
दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नूं मित्र बनाया, आखिर किस तरीके नाल? गुरबाणी ढंग दसदी है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब वाद। जद उस एक नूं सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है, अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है, जीवन धन हो जाता है। कहने मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है, दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहने गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया, दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया। सब मित्र सब को उम्मीद हम आपन की ना, पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर उदारमक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है, एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है, कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नु मारन वास्ते है, और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है, और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जांदा है। सदा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या, साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई, बहुत तपीश्वर है, बहुत जपीश्वर है, बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया, दर्शन कर राजा प्रसन्न होया। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। पावें साधु कहन लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है, असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण कर रहे हैं। पर राजा कहन लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आपदे दर्शन करा, ये नजराना है, ये भेट है, चलो नहीं पाना, आप रख लो दे देना किसे नू। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिना बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र, बूढ़ा मित्र, बचपन का दोस्त, और वो भी साधु से, वो भी तपस्या कर रहा से, मिलन ले आया है। लालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत कीता है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया है। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदे बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई 3 घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है वी इत्थे कल्लियां बैठे हां, तुसीं तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो, मैं 3 घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो,
फिर वापस आ जाते हैं। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत वो कट के दिता और आखे ए पा लो कस्बे ते चले हां तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हरक सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होते ने सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी सारियां दियां निगाहां मेरे ते अज ये निगाहां फिर गई ने अज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है इतने मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है सारे इसनू पे वेखदे ने खैस जिस घर विच जाना सी गए आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछिया उस बैरागी साधु तो ये जो नाल आए ने ये कौन ने क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने सोना चोला पहने होया है मुखड़े ते शांति झलक दी है निर्माणता बिखर दी है रहस बिस्माद अखां दे विच है तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फाड़े कौन आए ने दुख तो के कहिंदा है मेरे मित्र ने कल आए सन मेरे बचपन के दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने कपीश्वर ने पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा लेकिन अहंकार उबल पिया बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है। खैर जब इस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे कोई इस तरह तारुफ कराई दा है। खैर माफी मंगण लग पया कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ दूसरे घर गए। दूसरे घर वाले की भी निगाह इस साधु पे अखां विच रमज है बिस्मात है चेहरे की शांति है और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं इतना कीमती चोला इतना सुंदर चोला तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछे संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने ये कौन ने तो एकदम बोल पे मेरे बचपन के दोस्त ने बाल सखा ने और साधु ने तपस्या करने ने ज्ञानी ने रह गई इस चोले की गल ये चोला मेरा नहीं है मेरा नहीं है इस दे उची वो कह गया है मेरा है मेरा है मेरा है।
خیر اس گھر تو جیوں نکلے یہ بیراگی سادھو پھر معافی منگدا ہے مترا مینوں اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے سی پر نکل گئی ہے گل تو سہن کر لے برداشت کر لے ہوں میں نہیں کہاں گا تیسرے گھر گئے آؤ بھگت ہوئی بٹھائے گئے پر وہ چولا تیسرے گھر دے بھی سارے منکھاں نوں پربھاوت کر رہے ہیں نر ناری بچے سب پربھاوت اسے سادھو نوں دیکھ رہے ہیں سوال پوچھ لیا سنت جی یہ نال کون آئے نے یہ کہڑے سنت نے تو ہوں تعارف کراندا ہے میرے بال سکھا متر نے جتیشور نے تپیشور نے گیانی پرش نے پر رہ گئی یہاں کپڑیاں دی گل اس چولے دی میں اس دی گل نہیں کرنے نہ گل کر کے بھی کر گیا جد اس تیسرے گھر تو رخصت ہوئے کٹیا چ پہنچے اس مہمان سادھو نے اس دوست سادھو نے چولا اتار کے اگے رکھ دیتا آخیا تین دفعہ تو ننگا کیتا ہے اے لے اپنا چولا ہوں چوتھی دفعہ میں آپ ہی اتار دینا تین دفعہ تو اتروایا ہے تین دفعہ تو نگن کیتا ہے اہنکاری اپنے متر دا بھی مان سنمان برداشت نہیں کر سکتا اہنکاری اپنے گرو دی مہانتا بھی برداشت نہیں کر سکے گا وہ متر نو چھپائے گا ماں باپ گروان نے تے انہاں نو پچھے سٹے گا ودیا گرو ہے یا ادھیاتم گرو ہے اس نو بھی ہنکاری چھپان دی کوشش کرے گا پچھے سٹے گا مہاراج دی بانی بڑا سندر فرمان کر دیے جو گرو گوتے اپنا تے نر برے آری یہ بڑے برے پرش ہوندے نے ہنکاری گرو نو بھی چھپاندے نے کیوں پھر میری میں میرا وڈپنا پھر کتھے تے متر نو چھپاندے نے پتر نو چھپاندے نے اگر گنوان ہے ماں باپ نو پچھے سٹتے ہیں صرف اپنے آپ نو ہی اگے کرنا انہاں دی زندگی دا لکش ہے اور یتن کوشش یہ بھی ہوندی ہے رب نو بھی پچھے سٹیے پرماتما نو بھی پچھے سٹیے اور ناقش نے پچھے سٹن دی کوشش کیتی سی نمرود نے کہہ دیتا سی کون ہوندا ہے خدا میں خود خدا ہوں تو اہنکار اپنے تو وڈا کسے نو بھی نہیں من سکتا اہنکار جیندا ہے میں آشرت تو تے بالکل بھول جاندا ہے ایک اردو شاعر نے بڑی سندر نظم لکھی ہے بکرے دے بول نو اگے کر کے کہ بکرے دا بول ہے میں اسے نو آدھار بنا کے اس شاعر نے بڑی سندر کلپنا کیتی ہے فخر

0: गर्दन पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर दिता, सिर वज दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई ताते फिकत मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ उसे धुन की बनाने के लिए। आंद्रा रह गईया सुट दतिया गईया, बाकी तो सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईया कम विच वर्तिया, केवल आंद्रा बच गईया। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी दी जिहड़ी तंग लाई जांदी है वो बकरे दी आंत आउंदी है, अंदर आउंदी है।
0: ले गया नदाफ उसे धुनकी बनाने के लिए,
1: ये आंदरा ही रह गईयां सन।

नदा फुसे धुन की बनाने के लिए, जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो, उस आंत देते हो, नदाफ जोरदार सोटा मारदा, बस उस नाली रूई पिंजी जांदी है। जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। हुण उस आंत विच सोटे दी जरब नाल निकल रहा है, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। खुद इतनी कुर्बानी करे, साधना करे, कि साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नूं खाक ते अपने मस्तक नूं रगड़े, श्वास श्वास वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, ताई ये मैं तुम विच बदल दिए, जीवन धन धन हो जांदा है, महान हो जांदा है। अहंकारी उस तक अपनी करेगा, निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा, अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उसे प्रसन्न होता है, अपनी उपमा सुन के उपमा होने लग पी है दूजिया की, तीसरे की, मित्र की। तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा का मतलब की है? गल नूं छुटियाना। और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करता है जो किसी गल विच उस नालों अगे होवे, गुण विच, कला विच, ज्ञान विच, शील संजम विच, या फिर प्रभु दी बंदगी विच, या संसारी तल ते लै लो सता विच, धन विच, स्वप्न विच, किसी भी पक्ष तों जो अगे है, अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नूं सच नहीं कहेगा, अहंकारी निंदा करेगा। और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है, छुटियाण की कोशिश करता है, घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी, उन्हें भी तपस्या इतनी इतनी, परमात्मा उन्हें भी सन्मुख होया है, प्रभु सामने होया है, लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है, मारे है मारे है कड़े है। ये बेचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले ते मूर्ति दे सन्मुख सी, मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी, पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है, अहंकारियां निंदकां पिछ गए, नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिट होंदी है। जो गुणा दी सिफ तो सलाह करदा है, उसकी परमात्मा दी सिफ तो सलाह करदा है। गुण किसे मनुख दे भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है, पर उसे निंदा करदा है, गुणा दी निंदा करदा है, क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा की पिट हो जाती उसकी तरफ। और जिस मनुख की तरफ परमात्मा की पिट हो गई है, सब की पिट हो जाती है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते हैं,
आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख बहु भोगणे। ऐ अहंकार तेरे करके ते जीव जम देने मर देने आम देने जान देने दुख भोग देने सुख भोग देने थक जान देने टूट जान देने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं ब्रह्म।

0: कोई बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहे हुए हैं, भ्रमण कर रहे हुए, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते हैं और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हुए। असाध रोग है, किसी वैद्य को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लभनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जी किधरे अंदरों निकले तू ये तो औषधि होगी। मैं ये तो रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नु वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नु घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है। ये रोग अंदर है तो वैद्य भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तू उस औषधि का सेवन कर, कह सब कुछ तू ही है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु तू ही है, जितना कहता जाएगा उतना मैं मिटता जाएगा। और जैसे अहंकार पूर्ण तौर पर मिटेगा वैसे निरंकार पूर्ण तौर पर प्रकट हो जाएगा, और तू निरंकार का रूप हो जाएगा, ईश्वर का रूप हो जाएगा। गुरु कृपा जय नरको कीने ते ए जुगत पछाने, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। इस तरह तू प्रभु का रूप हो जाए।
1: उच्च विचार आप जी के समक्ष भेंट करिए, पेश कर फतेह प्रवान करने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर कौम दा ते हर अवतारी पुरुष दा कुछ इतिहास होंदा है, कुछ उसके सिद्धांत होंदे ने। सिद्धांत इतिहास, किसी भी अवतारी पुरुष नूं ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਪਹਿਲੂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ 90% ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, 10% ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ।

अखो सतनाम श्री समन समाप्त हो गया है, पर 5-7 मिनट में तोड़े लेने ध्यान न सुन ये जरूरी नोट करो। आप सारे ही स्कूलों में पढ़े हैं, तोड़े बच्चे भी पढ़ते हैं। जिहड़ा बच्चा स्कूल तो घर आके होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट की हुंदा है? फेल। ताइयों आपां कहिंदे बेटे होमवर्क करो, ट्यूशन रखो, दो दो तीन तीन ट्यूशनां रखियां सबजैक्टां ने। जिहड़ा बच्चा स्कूलों आके घर विच होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट फेल। ते याद रखियो आपां अरदास करके जे घर जाके आपां नाम ना जपिया रिजल्ट अपना भी फेल है, तुहाडा भी ते मेरा भी। जे आपां घर जाके वाहिगुरू ना जपिया रिजल्ट तुहाडा भी फेल ते मेरा भी फेल। जे आपां गुरु दी बाणी ना पढ़ी अपना रिजल्ट फेल होना है। आ हुण वेखियो तुसीं इहनां महीनियां च रिजल्ट बच्चियां दे निकलदे, जिन्हें पूरा साल पढ़िया उहदे नंबर भी चंगे आउंदे। भाई जिन्हें पढ़ाई नहीं कीती ओदी कोई डिवीजन नहीं। यह गुरु का दर है। इथों आप होमवर्क लेके जाना है। होमवर्क किने दिता है? श्री गुरु रामदास महाराज ने। की दिता है? कहिंदे गुर सतगुर का जो सिख खाए। पढ़ो गुर सतगुर का जो, नॉट गुर सिख, सिख जिन्हें सीखना शुरू कर दिता, जिन्हें गुरसिख बन दे रस्ते ते तुर पे, भावे अजे अमृत नहीं छकया, सिख है भाई, वह सीखन लग पे। पढ़ो वह की करे फिर? की कला गुरुद्वारे मत्था टेके? नहीं। पढ़ो गुर सतगुर का जो सिख खाए सो पलके उठ हर। एदा मतलब तुहानू याद है, सो पलके उठ हर नाम ते आवे उद्दम करे पलके पर पाती इश

आया होमवर्क। उठदिया बहिंदिया वाहेगुरु कहना है, जे वाहेगुरु ना कहा जदों गोडिया ने जवाब देना फिर हाए हाए कहना, होर नहीं होना फिर कोई। जे वाहेगुरु कहने लग पे फिर मैनू नहीं उम्मीद, गोडिया ने जवाब ही नहीं देना, तुसी हाए नहीं कहोगे कदे, फिर वाहेगुरु कहोगे। आखो वाहेगुरु, आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु। दिस इज यू आर होमवर्क, ये तुहाडा होमवर्क है कि जदों सवेरे नींद चो जाग खुले, चार बजे, पांच बजे, छह बजे जदों उठते हो, उठदे सार तुहाडा फर्स्ट वर्क एवरी डे ये होना चाहिए, अपने मंजे बेड ते बह के दो चार मिनट कह लिया करो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कह लोगे भाई, जप लोगे सवेरे, सवेरे जप लोगे, जिन्हें सुनते जेडे लाइव ते सुनते हो भी जप लो भाई, मैनू पता है लाइव ते भी बहुत सुन रहे हैं, तुसी जप लोगे सवेरे, जदों नींद चो जहाग खुले वाहेगुरु कहने, ये तां कहे होने, गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठर नाम त्यावे, तां त्या होने जे सवेरे उठ के वट्सअप ना चलावे, ते जे चलावे वट्सअप, जे सवेरे उठ के कलेस बुक देखनी है फिर नहीं वाहेगुरु कहे होने, मोबाइल रखे हो दूर, जदों सवेरे नींद चो जहाग खुले मोबाइल बाद में चकने, पहला दो चार मिनट कह लेना वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ठीक है भाई, कह लोगे, हथ खड़े करके जकारा छोड़ो, सिर वाहिगुरु कहोंगे, वाह वाह बोले।

महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन के जिस मानुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया, किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी, ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दान चत्र चक्र जान चत्र चक्र वर्ते चत्र चक्र परते चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दान चाचरी छंद न सत्र।

के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप है के अनुपो अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं विहीन है के एक है अधीन है।

केसरबत्र पौन केसरबत्र देश केसरबत्र पेश केसरबत्र राजा केसरबत्र साजा केसरबत्र दीन केसरबत्र लीन केसरबत्र जाहो केसरबत्र पाहो केसरबत्र देश केसरबत्र पेश केसरबत्र काल केसरबत्र पाल केसरबत्र हंता केसरबत्र गंता केसरबत्र पेखी केसरबत्र पेखी केसरबत्र काजा केसरबत्र राजा केसरबत्र सोख केसरबत्र पोख केसरबत्र त्राण केसरबत्र प्राण केसरबत्र देश केसरबत्र पेश के

स्वरूप है तेरा मुक्त विभूत भार भुगत प्रभा है सुजोत सदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त पराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंग आद रूप अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध अगंज अगाध सुभंग सर्वभाग।

नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी तरकाले।

यात छंद नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणास अगंजुल अनाम समस्तल निवास इंद्र कामंग बेपूत समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणास स्वधर्मंग बेपूत सदा सचदा नंद सतरंग प्रणासी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजायब बिभूत गजायब गनीमय हरियंग करियंग करिमल रिमय चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते।

सन्मात गजान के मान मलैया, गाढ़े गड़ान के तोड़न हर सो बातन ही चक चार लवैया। साहिब श्री साहब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया। दानव देव फनेदन साचर भूत पवै।

पर सान फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातव जो अंतरलोक को राज करेंगे कोट इस नानक जातक गजातक दान अनेक स्वयंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पात।

कमाय सहसा दियो मलिण कित संजम धोता जाय मर तो हो शब्द लाग हो हर सर हो चित लाय का नर गुर पर साधि सहज उपज सहसा जाय।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

शाम कह सितम्बर स्वामी समय अच्छा साच रहे सब को सत समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लया प्रस जाय नानक मुखंत्र पाए जुज मैं जोर छली चंद।

0: मनिये पत उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाई है तागना तू सपूत तागना इंद्री तागना नारी पलके थुक पवन तदाड़ी तागना पैरी तागना हथी तागना देवा तागना अखी वे तगया पे वत्ते वर तागे अवरा कत्ता है ले पाड़ करे भी आओ गड़ का गल दसे राओ सुन वे खोलो काई वड़ा मनंदा ना उस जान पोड़ी साहिब होई दयाल कृपा करे तसाई कार कराए सी
1: सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकुम

पेख को कह न सकत के अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजय तिरपाउन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत।

तालमेल नहीं बैठे। गल बहुत उच्ची सी, बहुत उच्ची सी, सिर दे उपरों लंघ गई। जद ए आख्या जांदा है कर्म कर, ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन, तू गिला क्यों करदा है? शुभ कर्म करके सुखा नाल अपनी चोली भर ले, जो कुछ तू जगत विच प्राप्त करना है कर ले। तेन खुल है, तेन धरती दिती है, ते बीज बोन दी तेन खुल दे दिती है। तू केसर बीजना है कि निम बीजनी है, तू जौ बीजने ने कि चने बीजने ने, तू अंगूरां दियां बेलां लानियां ने कि किकर दे बीज बोने ने, ये तेरी मर्जी है। खुल है, तेन धरती भी दे दिती, तेन बीज बोन दी खुल भी दे दिती। पर एक दफा बीज तू बो दिता ते बोन तो बाद तेनों ख्याल आवे मैं ते अंबां दे बूटे लाने सन, ला बैठा किकरां दे, अच्छा हुण परमात्मा मैथों भुल होई है, इन्हां किकरां नूं ही अंब ला दे, नहीं लगणगे। ऐसा नहीं होवेगा, ये उसका नियम नहीं है, ये उसकी मर्यादा नहीं है। बाबा फरीद कहिंदे ने लोड़े दाख बिजोरियां किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट, लांदा बूटे किकरां दे मंगदा अंब, चरखे दिच कतदा उन मंगदा रेशम, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। कतदा ते उन पे है, बुणदा ते उन पे है, ते मंगदा है रेशमी कपड़ा खड्डी तो, बुणदा ते किकर पे है, मंगदा अंब है। ऐसा हो है, बीज मनुख दुखां ते बौंदा है, मंगदा सुख है। इस तरह ही रहा, और जब इसनू सुख मिलदा नहीं तो गिलिया नाल भर जांदा है, और गिला इतना वध जांदा है कह दिंदा कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। लेकिन दूजे तबके दा मनुख ऐसा कह देंदा है, करन करावन सर्व को नाथ, उते आप ही नाथ है, मालिक है, सब कुछ उसके हाथ च है, इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ। फिर वो इंज ले लेंदा है, मनुख दे हाथ च की है, कुछ भी नहीं है, वाकई कुछ नहीं है। तुसी आखोगे हुणे ते मैं कह रहा कि तू किकर भी बीज सकदा है, अंब भी बीज सकदा है, पर मैं अर्ज करा फिर भी कुछ नहीं है मनुख दे हाथ च। क्यों? किकर बीजण दी खुल भी परमात्मा ने दिती है, अंबां दे बूटे लाण दी खुल भी उसे ने दिती है, खुल उसकी दिती हुई है। यह साड़ी मर्जी असी की बीजना है, पर साड़ी मर्जी की यह जी खुल है यह भी उस अकाल पुरख की दिती हुई है। तो इस बारीकी ते पहुंच के भगतां ने कह दिता साडे कोल कुछ भी नहीं, जे खुल भी है ते तेरी दिती है, साडे कोल अपना की होया? कुछ भी नहीं। इस रूप च आके जिस रूप च असी ले लैने आ, एक शराब पी रहा कहिंदा जदों गुरु छड़ावेगा उदों छड़ लेंगे, इहदा मतलब गुरु अजे तैनू यही आखदा पी, सवेरे भी पी ते शामी भी पी। लोकी कह देने जदों परमात्मा जगाएगा उदों अमृत वेले जाग के जप करांगे, इहदा मतलब अजे परमात्मा नहीं चाहुंदा। जदों गुरु चाहेगा उदों नेक कर्म करांगे, इहदा मतलब अजे गुरु यही चाहुंदा तू बुरे कर, तू माड़े कर। ये जिहड़े अर्थ लोगां ने कीते ने ते समझे ने, ये उन्हां दा भुलेखा है। ते इस वक्त दी विचार दा आधार जिहड़ी पंक्ति मैं चुनी है धन गुरु नानक देव जी महाराज दी, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उस सच्चे दे दरबार दे च सच कर्मा अनुसार फैसले करदा, बाकी कुछ भी नहीं। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, महात्मा बुद्ध ने इत्थे तक ऐलानिया कह दिता, भगवान दी फिक्र बाद देच करी, कर्म दी फिक्र पहले करी।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: गुरबाणी विचार दी सेवा विच अपना योगदान पा रहे हन ब्लूबेरी दे उत्पादक अते प्रोसेसर लाली फार्म्स स्वर्गवासी रजिंदर सिंह लाली जी दी पवित्र याद विच। इस पवित्र सेवा विच सहयोग देन लई असी लाली फार्म्स दे दिलों धन्नवादी हां।

0: भी नदी देच अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा, क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे, ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी, लाजमी होवेगी। व्याकुली गंभीर है, ए नदी गहरी कितनी है, इदा पाठ कितना गहरा है, ये चौड़ी कितनी है, ये गहरी कितनी है। तो ए राजयोगी, ए महान संत, मन दियां गहराइयां नू समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है, व्याकुलता ही इसकी गहराई है, बेचैनी ही इसकी गहराई है। और एक हकीकत है, बेचैनी अजे भी नापतोल विच नहीं आई, कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है। बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, इदियां जड़ां नहीं लभदियां, इदी तय नहीं लभदी, व्याकुलता ही इसकी गहराई है। जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने, जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है, और जिथे परबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही। ये इसनू उल्टा के कह दो, ए बेचैन क्यों है, तृष्णालु है, ए तृष्णालु क्यों है, एदे अंदर संकल्प ने, संकल्प क्यों ने, एदे अंदर इच्छावां ने, इच्छा दी पूर्ति करना चाहता है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। आलम ते इस तरह कहंदे ने, जिंदगी नापी जा सकती है, चलो वध तो वध कह लिए 100 साल, तृष्णा नहीं नापी जा सकती, व्याकुलता नहीं नापी जा सकती। और ये जिहड़ी आसा नदी है, कितनी लंबी है, जमीन दे ते वगदियां या नदियां दे, ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने, ए किन्नी मील लंबी है, इदा पाट किन्ना चौड़ा है, एक गहरी कितनी है। एक कोई नदी है जो मन देच वग रही है, ना लंबाई नाप दे चाहती है, ना चौड़ाई नाप दे चाहती है, ना गहराई नाप दे चाहती है, वो है आसा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया। बकायदा फैसला भी कर देता है, बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने, जिसने अपने मन नूं ही सामने रखे है। और सोग किथे ज्यादा आउंदा है, जिथे इच्छावां ज्यादा ने। और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां हुईयां ने, रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं हुईयां। कोई एक मनुख भी इतिहास दे च असी बयान नहीं कर सकते, या दावे नाल नहीं कह सकते कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईं, एक भी नहीं होया। गजब दी गल, इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता, और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां हुईयां होन, ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे, मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने, ते इस तो वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी, इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले, किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां हुईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन दे च पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती दे च पक्की जिंदगी किस नूं मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में, लेकिन फिर भी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 15.98 ਦਾ, ਅਤੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਉਰਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਲਵੋ 4.99 ਦਾ ਬੈਗ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਯੂ ਹੈਪੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदों तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह। पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए तां डॉलर इत्थे पहुंचने करने तां गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे लै लियो। 604-349-1313 यूनिट 103 8840-120 स्ट्रीट सरी 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।
5: गुरबाणी विचार दी सेवा विच अपना योगदान पा रहे हन ब्लूबेरी दे उत्पादक अते प्रोसेसर लाली फार्म्स, स्वर्गवासी रजिंदर सिंह लाली जी दी पवित्र याद विच। इस पवित्र सेवा विच सहयोग देन लई असी लाली फार्म्स दे दिलों धन्नवादी हां। 1550 ते गुरबाणी विचार तुहाडे तक पहुंचाउण दी सेवा कर रहे हन फ्रेज़र व्यू सीडर माता नसीब कौर जी दी पवित्र याद विच। इस नेक सेवा लई असी फ्रेज़र व्यू सीडर दे दिलों धन्नवादी हां।
6: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
7: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਲਵੋ 2.99 ਦਾ ਬੈਗ। ਬੀਸੀ ਰੈਡ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਵੋ 88 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਯੂ ਹੈਪੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ।
0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
8: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.